0: விளம்பு பிரேக் டைம்.
1: शिशु तथा बालबालिकालाई अत्याधिक गर्मीबाट जोगाउन, बालबालिकालाई दिउँसोको चर्को घामबाट टाढा राखौं, उनीहरूलाई हलुका र खुकुलो कपडा लगाइदिऊ, गर्मीबाट बचाऊ।
2: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।

0: पाजी थोड़ा जा क्लोज, थोड़ा जा। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह रुको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह, की जोड़ी है यार, गुड।
1: ध्वनि तू कहाँ गुम हो जाती है, तू भी चल ना हमारे साथ,
2: आइए आइए सर,
1: सनसेट पॉइंट तक फोटो खिंचा।
3: नहीं मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ, ऊंची ऊंची फोटो सेशन में आते ही जस्ट नहीं।

ऐसी बड़ी की पीछे तो करती है ऐसी पैसी तो मैं नहीं बनता जो देखा तुमने सब लोग अच्छे से तो देख जो आगे यहाँ पे साफ बने आगे यहाँ पर

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

अब रंग फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइथे नला विश्वासी चमक बसुगो परमेश्वरलाई मायनुन समाधान हिन्द जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुल्ला स्पार्क माई फे तथा नला विश्वासी चमक बसिगो अङ्क 52 री रङिदा स्वागत मुला ना वियोग तामाङ तिगर रङ हाइमा हाइमा याकरगिन महसुस लसुमुला थेन्दे नामला रोल चाहन लसुमुला सन्देन जब सम्बन्ध शोभल लागिरी रङ द याकरके महत्वपूर्ण ताम तोला अर्थात रङसे थेनेगा देदा परमेश्वरलाई माया उन्दला कलसी तीन अध्यायला 14 चु जम्मन ताम गदे भन्दा ग्रेन्चा एनी गदे नोङरी लभ माया हिन्न तिक दबिसम जम्मन सेदा गिक शोभा चा माया हिन्न हलाइदा परमेश्वरलाई माया से माया लभ भन्दा घनिष्ठ सम्बन्ध शोभा अर्को ज्ञान तरिका आर्य परमेश्वरलाई माया से नोन आत्मिक तत्व पिन्मुला जोसे सम्बन्ध गरेर याङला शरीरला सट्टा परमेश्वरलाई आत्माला माध्यम ज्ञान या कर्गी छ्याम टासप लमुला जब सन्दु गरेर छ्यामला याङला सम्बन्ध चुसे सुमुला माया याङला पेछा रोग्याम हमुला याङ सन्दुदा प्रतिक्रिया ज्ञान निराश तासेला अरे याङ तिङ टुटप लबारी अवस्था ज्ञान बस्ती बाबारी लागेर असफल सम्बन्धरी रङदा फस्न पिनबारी आर्य गलाती 5 अध्यायले छ तिगद विषम यसो ख्रिस्त विश्वास लमहेन्सी खतना लसै आलसै तिगै आइन् र गिक्सेन गिक द माया लसी विश्वास ल गेल बच्चा चु मूल ताम हिन्न रङ विगतला सम्बन्धरी रङदा नुप्प चोट लबल कारण चु ताबरी हमला परमेश्वरलाई माया सम्बन्धला केन्द्री आरिमुबा जब याङ रङदा पिनमुला तसै बदरी तिगै याङसिला आशाला चुला मायरी सो साचु सम्बन्ध ऐनबा तसै जेखेन याङसे रङदा निराशला अवस्थारी थान्सुमुला तिगदविषम याङला माया मायबाला सट्टा मायला लागि सन्दरी निर्भर मुबा एसिसी 5 अध्यायला 1 एनी गदे परमेश्वर से माया लबो लगादे तबसे लामा परमेश्वर रङमन दोबरी माइगो सन्दो छ्यामला सम्बन्ध शुभ तरिकारी परमेश्वर से गन्दा परमेश्वरलाई अनुकरण लबरी प्रोत्साहित लसिमुला परमेश्वर से मि गदे देन सम्बन्ध शुभ ज्ञान निस्वार्थ माया ज्ञान हिन्बा एफिसी 5 अध्यायले 2 ओछे ख्रिस्ट याङदा माया लमा रङ लसी याङ नोन रङ रङ नङरी माया लसी दिक्सी चितो ला तिग्दा विषम ख्रिस्ट याङदा माया लसी याङला लुई नोन पिन्जी ओछे थेला लुई बलिदान पिन्सी परमेश्वरलाई लागिरी जब देन बास्न खबा धुप तोजी जब याङ सन्द प्रति मायारी ब्रह्मुला चुसे मिग देद याकरी मिग देद याङ प्रति आकर्षित लमुला थेनी गदे याङ देन संगति लाब्रे सेमुला याङ थेनी गदे हाजिबा यन बन्धन बिना मायाला जीवा मुला याङला मायाला स्रोत परमेश्वर याङ प्रति ला मायाला इनार ज्ञान तेबा हिन्बा थेनी गदे थेन दे याङला याकरकी जखेन लच्छा सन्दोला लागिर आशीर्वाद शोभा हिन्बा जसरी परमेश्वर हाइमा दमन याङला लागिरी मलम मुसुला फिलिपी 2 अध्यायला 3-4 ओछे रङला जे ज्ञान च्याबरी

ये लवदिन रंग जे ग्रीन बिसी थमहामगो तर रंग भन्दा सन्दोदा ग्रीन मन्सी सोझी तसी चियो एनिगदे जम्म नोन रङदा जे जब तगै बिसी थमहामगो तर स्यान्दो गदे नोन जब तगै बिसी मनगो जब मिगदे सेमनाङमुला कि याङ साचिन थेनिगदेला ख्याल थान्मुला थेन्दे याङ थेनिगदेदा याङला रङमन व्यक्तिगत लाभला लागेरे प्रयोग लाभा प्रयास लाजिबा आरे थेनिगदे याङ देन सम्बन्ध थान्बरे सेम लमुला थेन्दे याङला छोनला आवश्यकताला अस्थायी रूपले फान्न तामुला याङ एन निराश वा चोट लाभरे रङदा तयार लजिबा आता तिग्द विषम याङला जग परमेश्वर स्थायी माया लाभरी शोभा मुला परमेश्वर जी रङ्गी लजीवनी प्रशस्त मातर आशिष पिन्छु गई आमेन। प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी निन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 98685353 हस् त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङ्गी छङमदानु जय मसी नमस्कार।